0: संगठन में लेयर फैलो, फिर टाइम देने की आवश्यकता ही नहीं रहे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, हर एक बच्चे के जेब में सहयोग के नोट होने चाहिए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फॉलो करना तो सहज है ना, जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता है। और अनुभव है सबको अच्छा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी भी सच्चे दिल के सने में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसके पीट करके कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे, जितना हो सके योग्य आत्माएं देख करके अनुभवी मूर्त बनाओ, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा आते रहो। आप कहेंगे नहीं आओ तो भी आएंगे। अनुभव ऐसी चीज स्वयं को भी अनुभव में पढ़ाओ, जितना जितना अनुभव में और महादानी बन की सेवा में बिजी रहेंगे ना, तो ये जो टाइम वेस्ट होता है ना समस्याओं में, दादियों को भी समय देना पड़ता है और अपने को भी समय देना पड़ता है, वो समय बच जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी भी कोई माया का संकल्प पियावे तो मन के विमान से शांतिवन में पहुंचना। मन का विमान तो है ना, है ना? सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिए। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा बाप दादा का कमरा, ये सने का दाम। और तीसरा झुपड़ी, ये सने मिलन का दाम। और चौथा हिस्ट्री हाल। तो आप सभी ने चार दाम किए तो झुपड़ी में रोड़ियां करने आ जाना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। और वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो तो स्ट्रियाल में पहुंच जाना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय बीच बीच में करना चाहिए, अभी अभी

0: समस्या भी आती है। ऐसे ही एक सेकंड में साकी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ तूफान को एक तोहफा समझ इसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चल के तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हो गया, फुल स्टॉप और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पे स्थित हो जाए, समस्या नीचे रह जाएंगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या को साइड सीन देखते रहे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुछ भी हो, बाप साथ है, मोचने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है, बाप का साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो ना तो मौज के बजाय मौज जाते हो, हम मौजना नहीं, ठीक है ना? अभी भी मौजेंगे नहीं मौजेंगे क्या? अभी नहीं मौज रहे है सिद्धी, अभी मौज में हो, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना? कि मौज चली जाएंगी, मौज नहीं जानी चाहिए। सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा नहीं करो लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगा। सिर्फ सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो थक जाते हो, मौज भी जाते हो, लेकिन बाप के साथ का अनुभव जहाँ बाप है वहाँ मौजी मौज, उस साथ को इमर्ज करो। सुनाया ना, याद करते हो लेकिन साथ को चूस नहीं करते, इसीलिए मौज जाते। संगम युग मौजों का युग है या मौजने का युग है? क्या मौज कर फिर मौजते क्यों? अभी अपने जीवन के डिक्शनरी से मौजना शब्द निकाल लो। निकाल लिया पक्का कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एकदम मिटा दो। परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा? और कोई है क्या? नहीं तो सदा मौज ही मौज है। सभी अपने ड्यूटी पर खुश हो, कि थोड़ा किटकिट है ड्यूटी में? नहीं, कुछ भी हो ये पेपर पास करना है, बात नहीं है पेपर। पेपर पास करने में खुशी होती है ना, क्लास आगे बढ़ती है ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई। ये नहीं सोचो पेपर आया पास हुआ मौज मना। जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं कितने मौज में होते हैं, पूछते हैं क्या? ये पेपर तो आएंगे, पेपर ही अनुभव में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा। दूसरी बात क्या देखी, क्यों का कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। दूसरा कारण ये दिखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में दिखा, कोई बहुत रायल रूप का भी अलबेला बन दे। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में अगर ये अलबेलापन है किसी भी रूप से, हर एक के अलग अलग रूप, लेकिन वह मुस्कुराती है, कहती है देख लेंगे क्या होता है। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। गाना आज क्यों सुना रही है, क्यों चाहो नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिए क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा, फिर कोई बात आएंगे ना कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है। इसलिए बनना ही पड़ेगा, मंजूर है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रही है कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। शरद के प्रारब्ध का अनुभव अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र शरद की दीवार पर शरद दे सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं देवता देने वाला। ये हो it।

0: mapap sa mapi. Sa karmeteka. Pache karito me karo kabine ka. Me karke pacho se karo. Dusri nishani hai. Divar purshara.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को अशांति और

जैसे जब कोई विशेष

Jam 11 melteo. Peace.

0: ऐसे समझते हो, ऐसा नशा है नशा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल जैसे नारियल तोड़ के उद्घाटन करते हो, रबन काट के उद्घाटन करते हो, पहले इन चार बातों के रबन काट और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, ये पानी डालो धरनी में, जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले ये नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती, नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता। सेवा सब करते हो लेकिन नंबर बाप दादा के पास रजिस्टर में नोट उसका होता है जो निर्विघ्न सेवाधारी। बाप दादा के पास ऐसे सेवाधारियों की लिस्ट है लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, लंबी नहीं। भाषण करने वालों की लिस्ट भी आपके पास लंबी है। बाप दादा उसको भाषण करने वाला कहता है जो पहले भाषण दे सबको फिर भाषण। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा करते हैं, तालियां बजती रहती है, लेकिन बाप दादा के पास लिस्ट वो है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये ब्राह्मण जन्मी याद और सेवा के लिए और कुछ करना है क्या? यही है ना, हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है। सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है, अलग है नहीं ना? अच्छा, बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है, दोनों का बैलेंस है बैलेंस अंतर पर जाते जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद, बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात पाप समान स्व के स्वमान की भी याद, जब पाप की याद रहती है तो सुते ही स्वमान की भी याद रहती। अगर स्वमान में नहीं रहती तो याद भी पावरफुल नहीं रहती।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कम से कम हर एक अपरत वेला तो मनाते हो, जो अपरत वेला रोज जरूर

हर जगह अमृत वेले का साधन तो अपनाते कोशिश अच्छी कर रहे हो। अमृत वेले को मैं तो देते हूँ, लेकिन आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है। उसमें जरूरिया

0: सभी खुश है कि बीच में माया भी जान से लेती है, खुशी नहीं कमाना। माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाए। अगर बाप को नहीं पहुंच सको तो अपने निमित्त परों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बनाना नहीं तो आदत पड़ जाए। ये अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है। तो अवश्य इस समय को सफल कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

से बीच बीच में 5 मिनट बिल्कुल अशरीपन का अनुभव करते चल, क्योंकि समय आवश्यक

amiga attention. Major Tiga, Madhuban me.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप और बच्चों का एक दिवस जन्म, यही वंडर है। तो आज आप सभी सालिग्राम बच्चे को मुबारक देने आई हो, बाप आपसे मुबारक लेने आई हो। देने भी आई हो, लेने भी आई हो। साथ साथ की निशानी है कि आप बच्चों का और बाप का आपस में बहुत बहुत बहुत स्नेह, इसलिए जन्म भी साथ साथ। सारा जन्म

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मनोबल को बढ़ाओ। मनोबल की सेवा बेहद की सेवा जो आप वाणी या सम्मान संयोग से करते हो, मनोबल की बेहद की सेवा एक समय की वा थोड़े समय की इस सेवा से बहुत बहुत ज्यादा। उसके

சம்பரத்வரா சேவா கர்த்தி ஹோ. லேக்கன் அப் இஸ் மன்சா சேவா கா அப்யாஸ் அத்தி ஆவஷ்யக் साथ साथ अभ्यास करते चलो, ये मनसा सेवा वही रंगत दिखाएंगी जो स्थापना के आत्मिक पाप के मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया और मनसा सेवा के फलस्वरूप आप भी देख रहे हो वही

समय अनुसार

Sakyat Sarupame Krishna Tete Kate Pite Chalte Stapna Me Ek Bap Ne Kiya समझेंगे ही नहीं कि ये कोई साधारण है। वही पूज्य पंथ का प्रभाव Peace.

be seen. Appears God was dick job.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ और आगे बढ़ाते चलो। एक दो के साथी है ना, तो साथ देना अर्थात आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ते चलो, से प्यार है तो बाप को किससे प्यार है। दीवार पुरुषा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Let's see.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना, और बाप दादा ने पहले ही सुना है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती। धर्म राजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्म राजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की आश है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप दादा को निश्चित

da koji pipa.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोदा हुआ है, था और है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: स्वयं को Assalamualaikum.

Yogi. Banane cake. Sample budget.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जय स्व के परिवर्तन में जय सेवा के सफलता में जय हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन
2: सफलता का
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चे सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वा नहीं होगा, ये होगा। इस सोच में ज्यादा रहते, ये तो नहीं होगा। कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा कब गीत गाते रहते। लेकिन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मा बाप को देगा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है हर आत्मा के वृत्त कैसी भी है कोई भी है, लेकिन अपने शुभ भावना से शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना करना भाव नहीं आवे, ये तो बदलने वाले नहीं, ये तो है ही ऐसे नहीं। सुनाया ना अभी आवश्यकता है, रह दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपने शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। आप सहयोगी बनो, किसे सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभावना के कोई नहीं सुन सकता, ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना रहम दिल ये सहज काम करता है। ब्रह्मा बाप को देखा मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, मालूम है, लेकिन उसी बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देगा, लेकिन फिर उसको भी बहुत प्यार भी करेगा, जिससे वो समझ जाते थे तो पापा का प्यार है और प्यार में गलती महसूस था कि शक्ति उसमें आ जाती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चारों ओर

假装费老，这把给不给的？说的给想的，说的给给来，我把那卡的，I'm

nicht.

sit up.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी बात तो समा देना अंदर मन में, बाप दादा को देख करके समा देना। एक सांस शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, अगर ये दोनों विशेष
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

it.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: समझ लो, बातें नहीं आएगी, बातें आएगी, लेकिन अपना लक्ष्य में लाना है। घबराना नहीं, तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बना दी। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते, इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उनको विधि नहीं आती। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Thanks.

Trick or treat.

बस एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए बेफिक्र बच्चा चमक।

0: जीवन कितने कुश्तिमा बन जाती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, जय नहीं है, जय पुराने।

Sikanme lagaya. Acha. Api. Ye practice. Sare din.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब कंबाइंड सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड, फिर अकेले क्यों बन जाते अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्ति

0: और समय सहयोगी शिवबाप परम धाम से आए क्यों है, किस लिए आए? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए। देखो ब्रह्मा बाप भी
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई आपसे पूछे

Vanessa.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: temporano con la tonga.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बिजनेस वाले हाथ उठाओ, ये सब बिजनेस है। अच्छा, नीचे करो नीचे। तो बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? चांस मिला है बिजनेस वालों को, बाप से भी बिजनेस कराओ। श्रम खुद किया वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेसमैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा। तो उन्हों को चिंता से हटाए, अपना शीख खजाने का मैं तो सुनाऊं। जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपने हम जिंस कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है क्या होगा, कैसे होगा, है चिंता? हाँ, नहीं है तो हाथ उठाओ। अच्छा, नहीं है चिंता, कल कुछ हो जाए तो चिंता नहीं है।
2: जाएंगे कैसे, नीचे ऊपर होंगे तब तो जाएंगे।
1: ایسی بے فکر ہو, بے فکر ہو کے توڑنے والا بھی بچ جائے گا, اور فکر میں ہو کے ڈرنا ٹھیک نہیں ہوگا, تو ایک دن میں کیا سے کیا بن جاتے ہیں یہ تو جانتے ہی ہو. بے فکر ہوں گے, ڈرنے اچھا ہوگا اور بچ جائے, ٹچنگ ہوگی. ابھی سمے انوسار یہ کرے یا نہیں کرے, اسی لیے فکر مارنا, بزنس بھی کرنا اور اپنی استھتی بھی کرنا. سدیو یہ یاد رکھو, بے فکر بادشاہ فکر کی بات بھی بدل جائے گی. ہمت نہیں ہارو, دل شکست کبھی نہیں.

0: Master Nahokar. Himmat rakhte chalo. To madad gupt milti rahegi. To bolo kaun ho? Businessmen sabhi bolo kaun ho? Kaun ho? Befikr bachao.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Awesome.

tonight. Good night.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी कर्म आरंभ करते हो स्थिति से कर्म आरंभ कर

0: जैसे हथके मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य के सीट पर सेटोगे फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो इस मालिक बन के चेकिंग को और बढ़ाना है। और इसकी निशानी है रिजल्ट सफलता सहज अनुभव।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, योग बाप को सब प्रकार के संकल्प जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का भोज वो दे दिया है ना, भोज दिया है या थोड़ा सा रह गए, क्योंकि थोड़ा भी भोज फरिश्ता बनने नहीं देंगे। और जब पाप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वो हाथ उठाओ, दे दिया है देखना, सोच के हाथ उठाना, बोझ दे दिया है, दे दिया है। अच्छा दे दिया, मुबारक हो, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र अच्छा बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना। बोझ लेने के लिए बाप आए, क्योंकि तेसर जन्म से बाप देख रही है बोझ उठाते उठाते बच्चे सभी

0: stata nicchiatica, che cai pacioco e sporane sansar che accrescia caboi porane samant che vi accrescia caboi leken porane sanskar os caboj mejare ti merawe to aaj bab dada sabhi bachon ko mubarak ke saath saath इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो, हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए करने में दीवार पुरुषार्थ ही नहीं है, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन दीवार पुरुषार्थ ही नहीं है। कारण दीवार पुरुषार्थ क्यों नहीं होता, कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं चलाया अभी, ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करती है, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार लेकिन चलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए संस्कार पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का संकल्प का अटेंशन रखो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सारे विरक्य की आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज रहम आता है। चिल्ला रही है, रैम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्व आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों को आवश्यक
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बाप दादा ने देखा समय अनुसार जितना सेवा का उपागोत्सा अभी प्रैक्टिकल में है बनाना

इस पॉइंट के ऊपर भी अभी स्वयं भी उमाकोत्सा में रहना और वायुमंडल में भी उमाकोत्सा दिलाना एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की

जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया, ऐसे अभी बाप दादा यही बच्चों में शुभ आशय रखते

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी बाप दादा ने देखा कि अगर ब्रह्मांड मिलके कोई भी एक संकल्प करे तो वही पर, लेकिन सबका एक ही संकल्प हो तो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, पार्थक्यता फर्श के पहले, इस फर्श को fun।

0: besarete en mí. Bitch, bitch, me ye. Apna chaat ji karo. Sarva khazane. Jama kitne ki? Jama ka khata nikalo, pota mail nikalo. Ek minute mein kitne sankalp chalte hain? फास्ट गति है न संकल्प की, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समृद्ध रहे, कितने साधारण रहे। आप ऐसे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देख पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है। लेकिन समय तो बीत चुका ना, इसलिए
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: किसको चलते फिरते

Listen.

tiene un olor. Mira todo vacío.

Ha muerto.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जिसको भी जो देखे ना, ऐसे लगे ये कौन मेरे सामने आ गए। देख देख के खुश होता नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपने बड़ी दादी को देखना, कितने न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहती है, अगर

सारे लाइफ में हाथ का मैं पन से न्यारी रही है उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है एक ही शब्द पक्का है कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है दादी कुछ हो रहा है क्या उत्तर मिलता कुछ नहीं क्यों इसके प्रैक्टिकल निशानी देख रहे तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना लेकिन दादी तो में रही सेवा में साथी रही तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? And so

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही शरदी

的伤感了。阿婆曼卡，哇，阿婆曼卡，阿婆那达拉，基斯达多内，乔克，走。अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अपमान में आते हैं, तो ये भी व्यर्थ संकल्प।

0: नहीं हो, मैं भी सब जानता हूं। ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, उज्जैन। ये मेरेपन का अपमान का संकल्प, ये भी सुख्यम अपवित्रता का अंश। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गए, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया के स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे ने में दो तो जोड़ने में दात्माए हैं, उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: उसको आठवें लास्ट नंबर भी हो सकता है। तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना, लेकिन नहीं। दूसरे को सुख देते देते सने देते देते आपके संस्कार भी सने सुखी बने ही जाने हैं। ये सेवा है और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: sundarám.
1: ऐसे

0: फाटर तेरा आवाज हो जाता है, ऐसे कोई आत्मक बम लगाओ, एटम बम नहीं आत्म बम। अच्छा बैठ जाओ, मुबारक को बोल, टाइम पर पहुंचने की मुबारक।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संस्कार है रही है, लेकिन वो लोगों भी फानी और वत्सा संकल्प द्वारा परिवर्तन करना नहीं चाहिए। बाप दादा सुनते रहते हैं।

Jimmy Ward.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की ना, तो विघ्न कितने आए और आपको कुछ हुआ तो बाप दादा छत्र छाया बनाता, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया मुखी देता है, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारिया अटल रहे तो प्रैक्टिकल में बेघरी लाइफ भी देखी। तपस्या के समय बिना मिलना विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया। लेकिन छत्र छाया रही था, रही ना, कोई नुकसान हुआ दुनिया वाले हंगामे में डर करके सब छोड़ करके भाग गए। जब पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ, सब भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट पर गया समाज, पर गया सब, सभी डर के मारे। जो अच्छी चीज लगती थी ना वो छोड़े कैसे, प्यार होता है ना उसे, तो जो सिंधी लोग एंटी थे आपने जो उस समय एंट्री थे गाली भी देते थे और सामान भी दिया। जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना वो हाथ जोड़ करके देखे गए, तो आप यूज करो। और दुनिया वालों को हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सारा बैल गाड़ी सब्जियों की थी, 5 रुपए में सब्जियां। कितने मजे से सब्जियां

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जाता है। युक्ति युक्त बोल, साधारण बोल भी Sarva Kasa

さ

Fair.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक बात, बाप दादा ने मैं चारटी में देखी, मैं चारटी, मैं नारटी नहीं, मैं चारटी। सामने

24. Lăsați-te.

Baby.

Just a little bit.

Attention, detail. Damn.

0: of peace. गलती से भी न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए तो सिर्फ दिल से मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं पाप का और पाप मेरा, ये निरंतर विजय का आधार। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा मेरे के ऊपर अधिकार होता है। मेरा बाबा निश्चय बुद्धि आत्मा सफलता की विजय।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, एक स्वयं को वरदान देता जो सहज पाप का प्यारा बन जाता, वरदाता पाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए पाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं, गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है, तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता है। गंभीर बनो, लेकिन अंदर गंभीरता हो, बाहर चेहरा मुस्कुराता हो। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा उसे डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे।

0: सौर नहीं मुस्कुराओ, जोर से हंसना नहीं मुस्कुराना, क्योंकि बाप दादा को अभी दीवार पर शरद चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण ते अपमान का मैं शब्द है, ते पान का मैं एक है, मैं आत्मा हूँ ये मैं, लेकिन ते पान के मैं शब्द अपमान का भी होता, अपमान का भी होता और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिरा। तो बाप दादा आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं इसको योग अग्नि में जलाओ, अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूं, इस मैं शब्द को पका करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। अनेक मैं तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है, तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो जलाना है, क्योंकि ये भी तो भोज है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बच्चों का बाप दादा मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार सरकमस्टेंस अनुसार
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा सभी को ये देखना चाहते हैं, अभी अभी देखना चाहते, एक सेकंड में स्वराज के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो एक सेकंड में दो तीन मिनट के लिए राजद कारी की सीट पर सेट

C'est ça.

Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बिना बिना प्रकार के सब समय परमान, पाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी आप सभी भी अपना चित्र कीजो, आता है चित्र श्रेष्ठ संघ।

रचना इस फिरके के जड़ में बैठी।

See.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाते। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा। बाप से मिलन का सदा आगे बढ़ाते, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलते है। बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लदे हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा है कि जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे धार्मिक है, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन में रखते रहे, वो नहीं होता है। जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ, लेकिन समय पर तो समय बाप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना है कि एक लव टाइम्स का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें लगातार हर सप्ताह जो भी आते हैं और अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, लेकिन पक्के रिलेशन में लाने के लिए उनकी पीठ नहीं करते। 6 साल के बाद वो याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन हर एक की एड्रेस पर उनको कुछ न कुछ सप्ताह में बेचना चाहिए, जिससे उनकी पालना होती रहे। बिना पालना के फिर कभी नहीं भरा होता। सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस भी उनकी करानी चाहिए। नस्तिक आते जाए और रिजल्ट अपने पास रहो। इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए, समझा सुना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: として。

Ich

Yep.

0: जमा खाता जमा हो जाता है, जैसे टिक टिक टिक टिक जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगह तम्बा बड़ी खुश हो रही थी,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं। मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है, खत्म तो नहीं हो गया। वो फोटो अपने साथ रखेंगे या कागज का रखेंगे या दिल का।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: sean por mí. Por favor. Hártenme. Somé, pero somé.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिक्किया बहुत नहीं दो कि मैं करूं, सिक्किया देने में एक दो को भी समोचा रहे, लेकिन कि मैं के साथ सिक्किया दो मोरली सिक्किया नहीं तो रैम दल बन के सिक्किया।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने के वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए, कोई कैसे बैठता है कोई कैसे में। अगर आप फोटो निकालो ना तो आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, शरारत करते हैं सभी, लेकिन शरारत के आगे तीव्र शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा हर बच्चे को ये दो मास दिए, इसमें जितना अटेंशन देंगे टेंशन के साथ बाप दादा भी

0: मन के मालिक, जिस मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बांह को चलाते हो, जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ रखो, रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो, आज मन के रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए, तब समर्थ बन वायुमंडल में समृतपन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो दीवार। करना ही है, करेंगे, देखेंगे, ये के नहीं चले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज चलाना है या मारा हुआ ठीक है, चलाने की शक्ति है शक्ति

0: जो दृढ़ संकल्प किया जाता है दृढ़ का अर्थ है फिर वापस नहीं आए। फिर पता है बहुत मीठी मीठी बातें करते जब फिर आ जाता है उस दृढ़ संकल्प को रोज चेक करो किस कारण से फिर दृढ़ता में कमजोरी आई। और उस सरकमटेंस के ऊपर मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर बैठ के उस संकल्प को संस्कार को समाप्त करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अश्वगंधा खांसी के लिए
4: है। बगीचे में दादी 3 दिन रहे उसी कारण से, और उसी टाइम में दादी ने इन को दृष्टि ज्ञान दिया था। अभी पक्का हो गया।
3: गुलजार दादी गई थी इनों की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल पर प्रसाद रेड्डी।
2: ये तो कल पहले इनका भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले लिया। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दाबा दृष्टांत देवे कि वीआईपी सर्विस अगर देखना हो हैदराबाद में दे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सभी बच्चे आपसे भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हैं।
1: अमेरिका वाले गुड मॉर्निंग करते होंगे, यहाँ वाले गुड इवनिंग और गुड नाइट करते हैं।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: ये तो बाप दादा पहले ही सुना देते, क्योंकि माया सुन रही है, वो बहुत चतुर है। लेकिन आप माया कितने भी चतुर हो, आप तो सर्वशक्तिमान के साथी हो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिक्किया सिर्फ सिक्किया नहीं तो, अगर सिक्किया देती भी है, देने पड़ती भी है, लेकिन किमिया और सिक्किया, किमिया रूप बन के सिक्किया दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, आपका मर्सीफुल रूप अवश्य सिक्किया का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर सिक्किया दो, तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप सिक्किया देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज्यादा सिक्किया के, तो सिक्किया सिक्किया की सिक्किया नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होंगे। इसलिए किमिया और सिक्किया साथ साथ हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुशखबरी

0: सभी आपको, जैसे आपके चलचित्र में शुभावना से देखते हैं, ऐसे आपको चेतन रूप में देविया के रूप में देवताओं के रूप में देखते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: खुशी का खजाना जित

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के सामने आवे तो दीप जग जाए। ऐसा भी समय आएगा जो आपके सामने आने से आपका दिव्य स्वरूप देखने में आवे, साकार साधारण स्वरूप गायब हो जाए। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप ऐसा समय उस रूप में देखते, ऐसे आप सभी भी ऐसे दिखाई देंगे। साधारण नहीं दिखाई देंगे, साधारण बासना आती है, लेकिन सभी ऐसे स्टेज में पहुंची जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Franco.

Coração.

Pessoal.

Sin que nada canalice.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: फर्श पे।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sunrise.

0: ganz Walibi.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा आज भी सभी बच्चों को जा

सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है।

जमा होता जाता है दुगना दुगना सब।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती, अनुभव स्वरूप बनने का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार देखा। तो आज बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार, तो प्यार वाले का मेहनत देखी नहीं जाती, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है, इसका कारण है अनुभवी स्वरूप
2: सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गया हुआ। अनुभव को हजारे लोग बदलने चाहिए, बदल नहीं सकते। जैसे आप सब सारे लोग आपको बदलने चाहिए, बदल सकते हो, तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की,

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधन नहीं है और ख्वाब को तो वैराग है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग, पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन यूज करो, बड़े दिल से करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते कमल पुष्प समान। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपका कर्म का योग का फल है। लेकिन वृद्धि की बात ऐसे तो नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में साधनों के वश फस्तों नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, शूस करते हुए को मर्ज नहीं करे। अभी आवश्यकता है विश्व में अति में जा रही है, तो अभी सच्ची वैराग वृत्ति चाहिए और वो वायुमंडल बनाने वाले आप पहले स्वयं में फिर विश्व।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा कि सेवा वा करम और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, वो कौन सा? पाप करा वन हार है और मैं आत्मा, मैं फलानी it.

вообще я так. Корыщу. Robot C. Caravan.

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब दादियों को देख के खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है।
2: साक्षात्कार होना है।
1: अनुभव करेंगे पता नहीं कहाँ फरिश्तों का झुंड सृष्टि पर आ गए हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो ये फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभ कामना तो स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में ताता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो न सुनो न बोलो न सोचो, और मांगो उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना दादिया स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे थे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे ओले ना देते कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो समय पर नहीं आती। लेकिन इसका कारण क्या? सर्वशक्ति समय शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेठ बेस्ट तार्स चलते हैं वह कभी टेंशन आता है तो सही स्वमान की सीट छूट जाती। बाप दादा ने बड़ी स्वमान

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थ, सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना तो टाइम लगता है। तो कौन हो सभी सहज पुरुषार्थ बोलो। याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चे जो बाप के बन

0: शरद में थकना नहीं, कोई भी छोटी मोटी बाधा आती है मदद लो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को ये सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरी से नैनों से दो शब्द से हर आत्मा की दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो इसलिए खुश ने माँ जेरी या खुश ने माँ मोरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती। कितना भी कोई

0: परिवर्तन कर ले। आज मन्ना की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं। और कुमारों के बिना से

0: ছাড়াও কুমার অঙ্কে পেনা সেন্টার চান্স দেয়।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: क्रोध का कारण आपकी जो संकल्प है वो चाहे उल्टी हो चाहे सुल्टी हो, लेकिन पूरा नहीं होगा ना तो भी क्रोध आता है। मानो आप चाहते हो कि हमारा भी कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होती है, उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आकर भी हम लोग को कब जान सकते, और आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता। चलो महाक्रोध नहीं करें, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प चलेंगे चलेंगे ना तो वो पवित्रता तो नहीं हुई ना। आप फर्क करना, विचार देना इसके लिए जुटी है, उस विचार को इच्छा के रूप में बदले नहीं कर। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है। से क्रोध भी होता है या तो आत्माओं भी चलता है वो क्रोध, लेकिन विचार देना स्वार्थ होकर के विचार, स्वार्थ रख के नहीं। तो मैंने कहा होना चाहिए, ये नहीं सोच आफर बने करो, ये रंग नहीं, लेकिन

0: Повытрытаканьем. Покаке. Лангау. Мотоге. Тохи билагауны раки. Кисару на чахи.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दिल में चट्टा तो लहरा लिए और कमरे का चट्टा भी लहरा लिए जगह जगह पर। अभी पार्थक्यता का चट्टा जल्दी से जल्दी लहराना ही है। यही फिर तलो दृढ़ प्रतिज्ञा का फिर तलो के जल्दी से जल्दी ये दुनिया को मुक्ति धाम में, जीवन मुक्ति धाम में भेजो। बहुत दुखी है ना, तो रहम करो। अब तो कसे चुराओ जो पाप का वर्षा है मुक्ति का, वो सबको दिलाओ। परेशान बहुत है, आप शान में हो वो परेशान।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

기억해. 트러블 위드 슈가. 성감 유극기 드라마맨이.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, सारे कल्प में एक ही बार होते। संगम युग में बार बार होती है, लेकिन एक ही संगम युग में होती। और जीवन कितनी सरल है, कोई हठ योग क्रिया विरिया नहीं करनी है, मेरा बाबा बस। अब मेरा तो भूलता मुश्किल ही है, बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है। और बाप को भी हर बच्चा प्यार है, ऐसे नहीं इतने बच्चे पता नहीं मुझे बाबा याद करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, बाप विश्व का पिता है, उसमें भी मुख्य संबंध में कौन है, आप बच्चे। एक है कितना प्यार है, आप कहते हैं प्यारा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल का प्यार है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत बहुत प्यार, ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे बोल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती। कोई भी बच्चा विशेष न हो ये नहीं है, हर बच्चा विशेष। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं, तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है। ऐसे समझ के आगे बढ़ते चल।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सामने रखो। जय मारुति जय।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: नाराज नहीं,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। मधुबन वाले।

ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारे है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार। वो क्या? अवश्य सहज बनाने का एक लिफ्ट है। वो लिफ्ट क्या है? जो भी मधुबन में आते हैं उनकी जैसे खाना बनाने वाले जो भी कोई ड्यूटी करने वाली है, बाप दादा तो कहते हैं, कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वो भी भाग्यवान है। क्यों? खुश हो जाते, चाहे खाने बनाने वाला, चाहे कोई भी ड्यूटी वाला, लेकिन मधुबन वालों को चांस संतुष्ट।

0: Gretchen. Mädchen, Mädchen.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हिम्मत कम तो नहीं होती, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah.

sa mela aur ye kya bacha ye kya ke pramar

0: दृढ़ संकल्प के कारण, तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता? ये तो एग्जाम्पल है आपके आगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन, ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस, स्थित हो जाओ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ऐसे मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद बाप की। लेकिन हिम्मत नहीं यार, अपन ने भाग्य का सितारा सदा चमकाते इस जन्म का पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ नहीं तीव्र पुरुषार्थ, अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाले। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हार, बातें आएंगी शक्तिवान के बच्चे हो, आपके आगे बात के बात आती है और चली जाती है, जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपना ही तकदीर नहीं गवा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुशी से

0: शब्द खत्म कर दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप के पुराने बच्चों के वृत्त ये बोल रहे कि अगर कोई कहता है कि शिवा है ही नहीं, बहुत करती है लेकिन शिवा दिखाई नहीं देती है, कोई सेवा के लिए मिलता नहीं, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल भरा हुआ है और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है शिकारी को परखने की शक्ति देखने की वो जो देश आंख चाहिए वो नहीं, बाकी जंगल में शिकार नहीं वही हो ही नहीं सकता। कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो ये कैसे हो सकता करने की विधि नहीं आती।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।